0: रहाओ।
1: जनन पिता लोक सुत बनता, कोई न किस की तरिया, सिर सिर रिजग संभाहे ठाकुर, काहे मन पाओ करिया। उडे उड़ आवै सह कोसा, तिस पाछे मचरे छरिया, तिन कमन खिलावै कमन चुगावै, मन में सिमरन करिया। सब निदान दस

हर पुरख निरंजन अरगम अगम अपारा सब त्याम है सब त्याम है तुध जी हर सच्चे सिर जनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्यावो संतो जी सब दुख विसार नहारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी हर एको पुरख समाणा एक दाते एक पेखारी जी।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कवियो बाच बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दै रक्षा पूर्णो ए चित्त की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो व्रत पारा हमरे दुष्ट सबै तुम गावो आप हाथ मुहे बचावो सुही बसै मोरो परवारा सेवक सिख सबै करतारा मोर अच्छा निज करद करिय सब बहरन को आस संगरिय पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रहे प्यासा तुम्हें शाड कोई अवरना त्याहूं जो बर चाहूं सो तुमते पाऊं सेवक सिख हमारे तारिया है चुन चुन सत्र हमारे मारिया है आप हाथ दे मुझे उबरिय मरण काल का त्रास निवरिय उजो सदा हमारे पछा श्री अस्तु जो करे हो रक्षा राख लियो मुए राखण हारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्मा बबतरा काल पाए शैबजु अवतरा काल पाए कर विषण प्रकाशा सगल काल का किया तमाशा जमन काल जोगी सब कियो वेदराज ब्रह्मा ज्योतियो जमन काल सब लोग सवारा नमस्कार है ताए हमारा जमन काल सब जगत बनायो देव दैंद जशन उपजायो आदंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिसी को हमारी सगल प्रजा जन आप सवारी सेवकन को सेवकन सुख दियो सत्रण को बल मो बद कियो घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पशानत चीटी ते कुंचर अस्थूला सपर कृपा दिष्ट कर भूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पशन घट घट के बट बट की जान जब दुकारख करा कर तारा प्रजा धरत तब देहे अपारा जब आकर्ख कर तु हो कब हूं तुम मैं मिलत देहे तर सब हूं जेते बदन सठ सब तारे आप अपनी बूझ उचारे तुम सब ही ते रहत निरालम जानत बेद भेद अर आलम निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभ ताका मूड उचारत भेदा जाको भेवना पावत बेदा ताको कृपाहन अनुमानत महामूढ़ कश भेद न जानत।

पद कोई अड़ल सुने गुंजो याहे स्वरसना पावई सुने मूर्चित लाहे चतुरथा आवई दुख दर्द भव निगनद नर के रहा ओज याकी एक बार चौपाई को कह चौपाई संबत सत्रह सहस पुणजय अर्ध सहसम तीन कह जाय भाद्रव सदी अष्टमी रब भारा तीर्थ द्रव ग्रंथ सुधारा इत श्री चरित्रो पखियाने त्रिया चरित्रे मंत्री पूब संवादे चार सौ पांच चरित्र समापतम सत शुभम सत बजो दोहरा दास जान कर दास पर की जय कृपाया पार आप हाथ दे राख मोहे मन क्रम वचन विचार चौपाई मैं ना गणेश प्रथम नाऊ किशन बिशन कबू न त्याऊ कान सुने पहचान न तिन साऊ

बिना जान मुझे प्रत प्रिया, चुन चुन शत्रु हमारे मरिया, देख देख जग में दऊ चल, राखा मय और ना दल। तुम मम करो सदा प्रत पारा, तुम साहिब मैं दास तिहारा, जान अपना मुझे निवाज, आप करो हमरे सब काज, तुम हो सब राजन की राजा, आपे आप गरीब निवाजा, दा जान कर कृपा करह मोहे।

सब हूँ कहत सुनाए कबे बाच दोहरा। ठाड पयो मैं जोर कर बचन कहाँ सिर न्याए, पंथ चला तब जगत मैं जब तुम करो सहाय दोहरा। जे जे तुमरे ध्यान कहो नितुड़ ध्याय है संत, अंत लहेंगे मुक्त फल पावेंगे भगवंत दोहरा। कालपुर की देहमो कोटक विष्णु महेश, कोट इंद्र ब्रह्मा किते राव सस क्रोर जले दोहरा। राम कथा जुग जुग अटल सब गोई भागत नेत, सुर्ग बास रघुबर करा सगरी पुरी समेत चौपाई।

ज्यो आप चलाए त्यो चलिया प्यारे ज्यो हर प्रभ मेरे पाया आपे जंती जंत है प्यारा

इतनी सेवा प्रदान करने जी कीर्तन करते हैं। पहला दी माफी बख्शन भाई सुरेंद्र सिंह जी लुधियाने वाले आप जी ने पुत्र बाणी लड़ीवार कथा विचार रहे जोड़नगे उन्होंने पासों प्यार से सरण करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

घर अग्नि माहे जलत रहे मिटवे कब नाहे। कामी बंदा हर वक्त भुजदा रहिंदा है, सड़दा रहिंदा है। तुसी कहोगे भी जे सड़दा है ते बंदा करांदा क्यों नहीं, पता क्यों? क्योंकि यूज टू हो गए हैं। तुसी पानी पा के ना किसी बर्तन स्टोव ते रख के ते थल्यो स्टोव नू बाल दियो। अच्छा, किसी व्यक्ति का हाथ उहदे विच रख दे, उहनू कहो भी हाथ विच रख दे, अग बल रही है, उहदे विच पानी है, वह स्लोली स्लोली स्लोली स्लोली गर्म हो रहा है। काफी देर तक वह व्यक्ति उहनू बर्दाश्त कर लेगा। क्यों? क्योंकि सहजे सहजे वह जिहड़े सैल ने तुहाडी स्किन दे, वह हौली हौली रिपोर्ट दिमाग नू देंदे ने, क्योंकि सहजे सहजे गर्म हो रहा है, नाल नाल वह मांसपेशियां अपने आप नू प्रिपेयर कर रही ने भी असीं इहनू बर्दाश्त करना है। पर जे तुसी पहला तो पानी उबाल के किसी बर्तन च किसी का गुट फड़ के अचानक ओ पाओ तो सी करके हथ पिछे खिंच लेगा। सानू इस अग विच सड़दियां नू दुख ता नहीं महसूस हुंदा भी असी इस अग विच सड़दे सड़दे यूज टू हो गए हैं, हैबिचुअल हो गए हैं, इस करके लगता भी ये कोई भी दुख नहीं, ये तो सगो रस है। हालांकि महा दुख है। पापी का घर अग्नि माहे, इस कामी पापी का तो इस तरह जिमें अग दे विच घर बना के बैठा हो, जलत रह सड़दा ही रहिंदा है, पुजदा ही रहिंदा है, मिटवे कब नाहे। ये हर वेले सड़दा रहिंदा है, यदि अग बुझदी नहीं गी। पापी का कर अग्नि माहे, जलत रह मिटवे कब नाहे। हर की भगत ना देखा जाए, जिथे हरि की भगती हुंदी है, कीर्तन हुंदा है, कथा हुंदी है, आम तौर पर वकारी बंदा उत्थे नहीं बैठेगा। मैं आम तौर पर शब्द वरत्या, कदी कदी मजबूरी च भी बहना पैंदा है, कोई समाजिक प्रोग्राम है, किसी परिवार के नाल उन्होंने आमंत्रित किया, आना पिया, अज इन्हां दे घर आवांगे, कल नूं साडे घर आउणगे। नहीं तो ये आम तौर पर की करते ने, अब्बल तो आउंदे नहीं, जे आउणगे तो वो वाल छाल कर झत कढ दे फिर जाए बहें कूड़ियारां पास, बैठ नहीं सकते क्योंकि वह चोट वजदी है, सुधार हुंदा है, वह जिहड़ी चोट है वह बर्दाश्त नहीं की हुंदी। हर की भगत ना देखा जाए, मार्ग छोड़ अमार्ग पाए, मूलों भूला आवे जाए, मूल अकाल पुरख दे सिमरन तो खुंझ गया ते हुण आवे जाए जन्म मरण दे चक्कर च पिया होया, पूरे ताल निहाले सास। इत्थे गल मेल फीमेल दी नहीं है, पहला मेल नूं रंदा फेर दिता है, हुण फीमेल दी गल आ गई है। पूरे ताल निहाले सास, वाके गले जम को है फास। ये जिहड़े मुजरे करदियां हुंदियां सन इस्त्रियां, ये कुछ उधर इशारा है बई, वह पूरी तरह फिर ताल दे नाल संगीत दे नाल अपने तन नूं बिठांदी है, निहाले सास सुर नूं ਉਹ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਚੋਂ ਮੁਰਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਂਧੀ ਏ ਤੇ ਵਾਕੇ ਗਲੇ ਜਮ ਕੋ ਹੈ ਫਾਸ, ਉਹਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਈ ਪਏਗੀ। ਜਾਕੇ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਓ ਕਰਮਾ ਸੋ ਭੱਜ ਪਰ ਹੈ ਗੁਰ ਕੀ ਸ਼ਰਨਾ, ਕਹਿਤ ਨਾਮ ਦਿਓ ਇਹ ਵਿਚਾਰ इन बिद संतो उतरो पार। ये काम क्रोध दे सरोवर चो तित सरवर डे पहले ही निवासा चो पार होण दा इको ही तरीका है भी गुरु दी शरण पै जाओ। जिवें भाई साहब गायन कर रहे सन भी, ऊपर पूजा कर मैं गुर पै पुकारिया तिन हौ लिया उभारी। गुरु कोल पुकार कीती भी मेरी वकारा सामने कोई पेश नहीं जांदी, गुरु ने इन्हां नूं दबका मारिया भी इहदे नेड़े नहीं आउणा। ਕੱਕੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਭਰਮਿਓ ਮੂੜੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਵਿਵਰਜਿਤ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੰਗੜਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਆਉਂਦੀ। ਆਖਿਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਰਿਆਸਤ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੋਕਅਪ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਹਵਾਲਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਖਸ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਖੁਫੀਆ ਤੰਤਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਾਤ ਇਹਨੂੰ ਡੱਕ ਦਿਓ। ਉਸ ਲੋਕਅਪ ਚ ਇੱਕ ਰੰਗੜਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਡੱਕੀ ਹੋਈ,

गुरु जी के दर्शन को बल जाऊं, जप जप जीवा सतगुर नाऊं, सो कहो टल गुर सेविया एहनस सहज सुभाए दर्शन।

वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगु

Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru.
गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वा

बहुत सियाणप जम का पहो ब्यापे अनक जतन कर त्रिसन ना तरापे पेख अनेक अगण नहीं बुझय कोट उपाव दरगह नहीं सिजय छूट सनाही उपयाल मोहे ब्यापे माया जाल अवर करतूत सगली जम डाने गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने हर का नाम जप दुख जाय नानक बोले सह सुपाए

हार स्वामी सगल कटा के अंतर जामी अपनी गत मित जान हो आपे आपन संग आप प्रभ राते तुमरी उस्त तुम ते होए नान कबर न जान सको सर्व धर्म मह श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया मह उत्तम क्रिया सा संग दुर्मत मर हिरिया

दयाल करतूत पशु की मानस जात लोग प्रचार करे दिन रात बाहर पे खंतर मल माया छब सिना है काशी करे सिपाया

जय सदनाम सकार जा कै मन लागा प्रभ मीठा सर्ब सुख ताहू मन बूठा जिस जने अपना हुक्म नाया सर्ब थोक नानक तिन पाया गण साहु अपनी दे रास खात पीत बरत अंद उलास अपनी अमान कह बहुर साह ले अज्ञानी मन रोस करे अपनी प्रतीत आप ही खोवे बहुर का विश्वास न होवे जिसकी बसत तिस आगे राखे प्रभु की आज्ञा मान माथे उसते चौगन करे निहाल नानक सहब सदा दयालु अनक भात माया केहे तसर पर होवत जान अनेत बिरखी छाया स्यों रंग लावे ओह बिन सेह मन पछतावे जो दिसै सो चालन हार लभत रहो तह अंधार बटाऊ स्यो जो लावे नेह ताक हाथ नावे केह मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई कर कृपा नानक आप लैलाई मिथ्या तन धन कुटम सुबाया मिथ्या हां मैं ममता माया मिथ्या राज जो बन धन माल मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या रथ हस्ती अस वस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता मिथ्या त्रोह मोह अभिमान मिथ्या आपसी उपर करत गुमान अस्थिर भगत साध की शरण नानक जाप जाप जी वै हर के चरण मिथ्या श्रवण पर निंदा सुन है मिथ्या हस्त पर धर्म को हिर है मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रय रूपाद मिथ्या रसना भोजन अनसवाद मिथ्या चरण

जिह प्रसाद सुनह करनाद, जिह प्रसाद पेखे बिस्माद, जिह प्रसाद बोलह अमृत रसना, जिह प्रसाद सुख सहजे बसना, जिह प्रसाद हत कर चल है, जिह प्रसाद संपूर्ण फल है, जिह प्रसाद परम गत पावे, जिह प्रसाद सुख सह समावे, ऐसा प्रभु त्याग बरकत लागो, गुर प्रसाद नानक मन जागो, जिह प्रसाद तू प्रगट संसार, तिस प्रभु को मूल मनो बिसार, जिह प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूड तू ता कहो जाप, जिह प्रसाद कार्ज पूरे तिसहे जान मन सदा हजूरे, जिह प्रसाद तू पावे साच रे मन मेरे तू ता स्यों राच, जिह प्रसाद सबकी

तीना ब्रह्म ज्ञानी की सब उपर माया ब्रह्म ज्ञानी ते काच बुराना पया ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृहित अमृत बरसी ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ब्रह्म

से प्रभ संग ब्रह्म ज्ञानी कै नाम धार ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परिवार ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत ब्रह्म ज्ञानी हबते आगत ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी कै कर सदानंद ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश।

सदादेश ब्रह्म ज्ञानी का कथय न जायत अक्षर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने ब्रह्म ज्ञानी की गात ब्रह्म ज्ञानी जाने ब्रह्म ज्ञानी का अंतर पार नानक ब्रह्म ज्ञानी का सदा नमस्कार ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता ब्रह्म ज्ञानी सद जीव नहीं मरता ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता ब्रह्म ज्ञानी नाथ का नाथ ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ ब्रह्म ज्ञानी का सगले कार ब्रह्म ज्ञानी आवनकार ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनि श्लोक उतार है जो अंतर नाम सर्व में पेख भगवान निमख निमख ठाकुर नमस्कार नानक ओह अपरस सगल निस्तारे अष्टपदी मिथ्या नाही।

कारस्पति कई कोट हो पुजारी कई कोट अचार व्यवहारी कई कोट पैतीसवासी कई कोट बन ब्रह्मदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपीसर होते

कोट पाताल के वासी कई कोट नरक स्वर्ग निवासी कई कोट जन्म जीवे मरह कई कोट बोजोनी फिर है कई कोट बैठत ही खाहे कई कोट काले थक पाहे कई कोट किए तरवंत कई कोट माया मह चिंत जह जय भाणा तह तह राखे नानक सब किस प्रभ के हाथे।

सिद्ध साधक बहु ज्ञान कबहु कीट हस्त पतंग हुए जियान कजौन परमह परमिया नाना रूप ज्यो सुवांगी दिखावे ज्यो प्रभ भाव है तिवे नचावे ज्यो तिस भाव है सोई हुए नानक दूजा वरना कोई

परमान। कोट कर्म करे अवतारे श्रम पावे सगले बिरथारे अनक तपस्या करे अहंकार नरक सुर्ग फेर अवतार फेर

जाए। एक आस हर मन रखो नानक दुख परम पहो जाए। अष्टपदी मानव की टेक मृति सब जान दे।

कृपा करे। सो सेवक किस ते डरे, जैसा सा तैसा दृष्टाय, अपने कार्य में आप समाय। सोदित सोदित सोदित सीजया, गुर प्रसाद तत् सब बुझया, जब देखो तब सब किस मूल, नानक सो सूखम सोई अस्थूल। नह किस जन्मे नह किस मरे, आपन चलते आप ही करे। आवन जावन दृष्टन दृष्टा क्या कारी, तारी सब सृष्ट आपे आप, सगल मह आप, अनक जुगत रच थापे थाप। अविनाशी नाही किस खंड, धारन धार रहो ब्रह्मांड। अलाख्य उपे उपर जपायत, नानक जाव जन प्रव जाता। सो सोभावंत सगल संसार उदरै तनमंत, प्रभु के सेवक सगले उदाहरण, प्रभु के सेवक दुख विसारण। आपे मेल है कृपाल, गुर का शब्द जप पै निहाल, उनकी सेवा सोई लागे, जिसनों कृपा करहिं बड़ भागै।

सगल काट सो है तन बनता हुए क्या को गर्भ है जा सब के तिसका दिया दरबे आत सूरा जे को कहावे प्रभु की कला बिना कहता हवे जे को हुए बह दातार तिस देन हार जाने गावार जिस गुर प्रसाद उठे हो रोग नानक सोजन सदा रोग ज्यो मंदिर कहो थामे थमण त्यो गुर का शब्द मणे अस्थमण

रहे रास लो भी बतंग। राम नाम जप हिरदे माहे, नानक पत सेती कर जाहे। जिस वखर को लैन तू आया, राम नाम संतर कर पाया। ताज मान लिहो मन मोर, राम नाम हिरदय मैं तोल। लाद खे बसंते संग चाल, अवरते आंग बिखिया जन जाल। धन धन कह सब कोए, मुख उजल हर दर गए सोए। एहो वापार विरला वापारे, नानक ताके सदबलहारे। चरण साध के तोए तोहे पियो, हर प्रसाद कहो अपना जियो। साध की तुहर करो स्नान, साधु पर जाइए कुर्बान। सा सेवा बड़भागी पाइए, सात संग हर कीर्तन गाइए। अनक बिघन ते साधु राखे, हर गुण गाए अमृत रस चाखे। ओट गही संत दरियाया, सर्व सुख नानक तेह पायो। मृतक का जीवालन हार, भूखे को देवते आधार। सर्व निदान जाकी दृष्टि माहे, पूर्व लिखे का लह न पाहे। सब कह तिस काहु करने जोग, तिस बिन दूसर हुआ न होग। जप जन सदा सदा दिन रैनी, सब ते निर्मल करनी। कर कृपा जिसको नाम दिया, नानक सो जन निर्मल थिया।

सत करनी सचता की रहत सच हृदय सत मुख कहत साची दृहत साचा ओंकार सच वरते साचा पासार पार ब्रह्म जन सच कर जाता नानक सोजन सच समाता सलोक रूप नरेह नर अंक त्रिगुण ते प्रभु भिन्न तिसे बुझाए नानका जिस होवै सो प्रसन्न अष्टपदी।

संग एक ले विलागी गुण गोबिंद कीर्तन जन गावे गुर प्रसाद नानक फल पावे सलोक आद सच गुआ सच है पे सच नानक हो सी पे सच अष्टपदी।

सदकाम बोल हो जास जेहबा दिन रात प्रभु अपने जन की नीदाद करे भगत आत्म के चाय प्रभु अपने सिंह रह समाय जो हो आहोवत सो जाने प्रभु अपने का हुकुम पछाने तिसकी

पार ब्रह्म रंग राता ब्रह्म जन जन्म पार ब्रह्म एक आप नहीं कह परम सहस सिहान पलया न जाइये नानक सा गुर बिड भागी पाई है सफल दर्शन।

ठाय ताक बिगल न लागे कोई जा के हृदय बस हर सोए करता ती ठांडा हर नाओ सिमर सिमर सदा सुख पाओ पाओ बिन से पूर्ण हो आस भगत पाए आत्म प्रगास तित कर जाए बस सेवना सिंह कहु नानक काटी जम फांसी।

बृहस्पति संत संग एम त्रिप्रभि ठाना प्रभु का लागा मीठा सगल सिमिगरी एक कट माहे अनक रंग नाना दृष्टा हे नाव निध अमृत प्रभु का नाम देहि मैस का विश्राम सुन समाध अन तैनाद कह न जाई अचरज विस्माद तिन देखिया जसाब दिखाए नानक ते जन सो जी पाए सो अंतर सो बाहर नंत घाट घाट व्याप रह भगवंत तरन माहे आकाश पयाल सर्व लोग पूर्ण प्रतपाल बंतर प्रभत है पार ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा कर्म पावन पाणी बै संतर माहे चार कुंट दे दिस समाहे तिस्ते भिन्न नहीं कोठाओ गुर प्रसाद नानक सुख पाओ वेद प्राण सिमरत मैं देख ससियर सूरन खतर मैं बाणी प्रभु की सब को बोले आप अडोल न कबहु डोले सर्व कला कर खेल खेल मोल न पाये गुण हिमोल

निदान ने नमास्तमं निर्नाथे नमास्तमं परमाते नमास्तमं अगंजे नमास्तमं अपंजे नमास्तमं अगाले नमास्तमं अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वेशे नमो राजराजे नमो शासाजे नमो शाशाहे नमो माहमाहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो शोक शोखे नमो सर्वरोगे नमो सर्वभोगे नमो सर्वजीतं नमो सर्वीतं नमो सर्वज्ञानं नमो परमतानं नमो सर्वमंत्रं नमो सर्वजंत्रं नमो सर्वदृशं नमो सर्वकृशं नमो सर्वरंगे त्रिभंगी अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिजे अभिजे समस्तं प्रसजे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी सदा सर्वदा हृदय सिद्धं निवासी चरपट शांत त्वप्रसत्त्व प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल सर्वंग अल्लाह कर्मंग सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पाने सर्वंग माने सर्वंग प्राणंग सर्वंग तरानंग सर्वं भुगता सर्वंग जुगता सर्वंग देवंग सर्वंग पेवंग सर्वंग काले सर्वंग पाले रुआल शांत अथवा प्रसाद आद रूपनाथ मूर्त अजोर पुरख अपार सर्वांतरमान देव अपेवाद उदार सर्पालक सर्वकालक सर्वगोपन काल जतर तत्र विराज अवधूत रूप प्रसाद नाम ठामना जात जागर रूप रंग न रेख आद पुरख उदार मूर्त अजौन आद अशेख देश और न पे जाकर रेख ना राग जतर ततर दिशा विशा हो फैल्यो अनुराग नाम काम विहीन पेख तामू न जाए सर्वान सर्वतर मान सदैव मानता है एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेल न अंत को फिर एक दे पे बना जाने जे बेद और कतेब रूप रंग ना जात पास हो जाने के जेब तात मातना जात जाकर जनमन विहीन चकर बकर फिरा चतर चक मानी पुरतीन लोक चौदह के बिखे जग जाप ही जे जाप आ देव अनाद मूर्त थाप्यो सबे जे थाप परम रूप पुनीत मूर्त पूर्ण पुरख अपार सर्व विश्व रचय स्वयं भव गण पंजनहार कानहीन कला संयुक्त अकार पुरख देश धर्म धाम सो परम रहता भूत लख अभे संग रागना रंग जाके जात पात नाम गर्भ गंजन दुष्ट पंजन मुग्धाय काम आप रूप अमीक अनुसत एक पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर्वंजनाद्रुप असूत अंगहीन अभंगनाथ मेक पुरख पार सर्वलायक सर्वगायक सर्वगोप्रत पार सर्वगंता सर्वंता सर्वयान भेख सर्वशास्त्र न जानी जरूप रंग अरेख परम वेद पुराण जाक नेत भागत नेत कोट सिमृत पुराण शास्त्र न अबहि बहुचित मदभार छंद प्रसाद गुणगन उदार महमा अपार आसन अभंग अनंग अनुभव प्रकाश निस्तन अनास आजान बाहो शाहन शाह राजान राज भानान भान देव

चीटी ते गुंजरिया सूला सपर कृपा दुष्ट कर फूला संदन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन गए सुखी एक एक ही पीर पछाना घट घट गए बट बट की जाना जब कर करा कर सारा प्रजा धर तब देहे अपारा जब आ करख कर तो कबू तुम मैं मिलत दे तर सब हूं जेते बदन शिष्ट सब धारे आप अपनी बूझ उचारे तुम सब ही ते रहत निरालम जानत भेद भेद अर आलम निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असमता का मूढ़ उचारत भेदा जागो भेवना भावत भेदा तागो कृपाहन अनुमानत महामूढ़ कछ भेद न जानत महादेव को कहत सदाशिव निरंकार का चीनत नैभव आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तो तेती तुमरा लखा न जाहे पसारा कहबत सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप सुरूपा रंग भयो राव कही भूपा अंड जेर सेत जकीनी उदभुज खान बहो रज दीनी कहूं फूल राजा हव बैठा कहूं सिमट भयो संकरे कैठा सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव आ जुगा स्वरूप स्वयंभव अवृक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण गाता जे अस्तुता विशरणी परे तिनके दुष्ट दुखित हवे मरे पुरख जमन पग परे तिहारे तिनके तुम संगठ सपटारे जो कल कोई कबार त्याय है ताके काल निकट न है रक्षा होए ताए सब काला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला कृपा दुष्टन जाय न्यारो ताके ताप तनक में हर हो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शाश्व सके न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास्ते ताहे उबारा जन्नर नाम तिहार हो कहा दार्थ दुष्ट दोगते रहा खड़के तुम्हें सरन तिहारी आप हाथ दे लेहो उबारी सर्व ठाउर मोहो सहाई दुष्ट दोगते लेहो बचाई कृपा करी हम बर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुभ राता किल विग सकल देखो हरता दुष्ट दुखियों को शय करता श्री असुज्जा पय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तकाला मन बांचत फल पावे सोई दुख ना तसे ब्याव दुख अड़िल सुने गुंग जो जाए सुरसना पावई सुने मूर्च तलाए चतुर्थ आवई दुख दर्द पावना ना तन्नर के रह हो जो याकी एक बार चौपाई को कह चौपाई संबद्ध सतरा सहस पणिजय अर्थ सहसुन तीन के जय बहादुर सुधी अष्टमी रववारा तीर सदर्भ ग्रंथ सुधारा सवैया

सिमरौ सो प्रभ अपना स्वामी सगल कटा का अंतर जामी रहाओ चरण कमल स्यों लागी प्रीत साची पूरन निर्मल रीत संत प्रसाद वसै मन माही

संत जना हर मेल हर पाया वड भागिया बलराम जियो निर्मल हर पाया हर गुण गाया मुख बोली हर बाणी

प्रथम भगौती सिमरकै गुरु नानक लई ते आए, फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासै होए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरौ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई जिस डिठै सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरियां घर नौ निध आवै ताए। सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत

करो जी अखर वादा घाटा भुल चुक मुआफ करनी सरबत दे कारज रास करने नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला।

लिखिया रहन मिहानी पछे ताणी और चली गई निरास जिनको साधु पेटिया सो दरका हुई खलास कर कृपा प्रभ अपनी तेरे दर्शन हुई प्यास प्रभ तुद बन दूजा को नहीं नानक की अरदास असार सुहंदा तिस लगे जिस मन हर चरण निवास सावन सरसी कामनी चरण कमल स्यों प्यारी मन तन रत्ता सच रंग एको नाम आधार बिखिया रंग कुड़ाव्या दिशन शब्बे सारे हरे अमृत बूंद सहावनी मिल साधु पी मनहार वंत्रिन प्रभ संग मौलिया समर्थ पुरख अपार हर मिलने नू मन लोजदा कर्म मिलावन हार जिन्नी सखिए प्रभ पाया हव तिन कै सत बलहार नानक हर जी मया कारी शब्द सवारन हार सावन तिना सुहागणी जिन राम नाम उर हार पादो परम भलाणिया दूजे लगा हेत लख छगे अर बनाया कारज नाही केत जिदन देह बिनससी तित वेले कैसन प्रेत पकड़ चलायन दूत जम किसे न देनी पेत

0: से दिसन नित खड़िया, रतन जवे हिर लाल हारे कंठ तिना जड़िया। नानक बांसे तूर तिन प्रभ सर ने दर पड़िया, मगर प्रभ आराधना बहुर न जन्मड़िया। भोगत खारना व्यापी कंठ मिलिया हर ना हो, मन बेदया चरनार बिंद दर्शन लगड़ा लसाहो। ओट गबिंद गपाल राय सेवा स्वामी लाहो, बिखिया पो न सकी मिल साधु गुण गाहो। जाते उपजी तह मिली सच्ची प्रीत समाहो, कर गहली नी पार ब्रह्म बौर ना बिछड़िया हो। बार जाओ लकबेरिया हर सज्जन अगम गाहो, शरम पई नारायण नानक दर पिया हो। भोग सुहंदा सर्ब सुख जिस बख्शे भी परवाहो, माघ मंजन संग माल संग साधुआ तूड़ी कर इशनान। हर का नाम त्याय सुन सबना नो कर दान, जन्म कर्म मल उतरे मन ते जाए गवान। काम क्रोध ना मोहिया बिनसे लोभ सवान,
1: सच्चे मार्ग वस्तत करे जहान। अठ सठ तीर्थ सकल पन जी दया प्रवान, जिसनु देवे दया कर सोई पुरख सुजान। जन्म लिया प्रभु अपना नानक तन करवान, माघ सुचे सह कढ़िया जन्म पूरा कर मेहरबान। फलगुण आनंद अपार जिन्ना हर सज्जन परटे आए, संत सहाई राम के कर कृपा दिया मलाए। सेज सुहावी सर्व सुख हम दुखा नहीं जाए, ऐश कुनी बड़ बगनी वर पाया हर राय। मेरे सैया मंगल गावी गीत गोविंद अलाए, हर जे हाय अवना देसी कोई दूजा लवे न लाए। फालतू फालतू सवारियां ना नह चल दितियां न जाए, संसार सागर तै रखियां ना बढ़न न जन्मे ताए। जेह बा अनेक एक अनेक गुण तरे नानक चरणी पाए, फलना नैत सलाइए जिसनु तरना तमाए। जन जन नाम ते आया तिन के काज सरे, हर गुर पूरा अराध्या दरगाह सच खरे। सर्ब सुखा नित चरण हर भौजल बिखम तरे, प्रेम भगत नन पाइया विह्या नह जरे। कूड़ गए दुबुद्धा नसी पूर्ण सच भरे, पार ब्रह्म प्रभ सेव गए मन अंदर हे को तरे। महान दिवस मूर भले जिस को नदर करे,

चक्कर होवे खुशी करे नत जियो। पारवा सोना रूपा होवे हीरे लाल जड़ाओ, की तू है सलाहना आखण लहे नचाओ। महला पहला पार अठारह मेवा होवे बरड़ा हो सुबाहो, चंद सूरज दोए फिरदे रखिए नहचल होवे थाओ। भी तू है सलाहना आखण लहे नचाओ। महला पहला जय दहे दुख लहिये पाप ग्रहा दोहरा हो, रात पीणे राजे सरें ऊपर रखिए।

व्याप मुराह रे मन मेरे परम न कीजे मन मन अमतरस पीजे रहा जन्म जीत मरन मन मान्या आप मुगाह मन मन ते जान्या नजर पई कार करते जान्या जत सत तीर्थ।

तीन अवस्था कहे बखियाण, तुरियावस्था सतगुरते हर जान, हर भगत गुरु सेवा तरना, वह जन्म हो है मरना रहन, चार पदार्थ कहे सब को ही, सिमरत शास्त्र पंडित मुक्त सोही, बैन गर अर्थ विचार न पाया, मुक्त पदार्थ भक्त हर पाया, जाके हृदय बसिया हर सोही, गुरमुख भक्त प्राप्त होई, हर की भगत मुक्त आनंद, गुरमत पाहे परमानंद, जन पाया गुरदेख दिखाया, आशा मह निराश बुझाया, दीनानाथ सर्व सुख दाता, नानक हर चरणी मन राता, गौड़ी चेती महला पहला, अमृत गाया रहे सखाली, बाजी हो संसारो, लाभ लोभ चकूट कुमावे, बहुत अड़ावे भारो, तू गाया महरली देखी, ज्यो तर ऊपर जारो, सुन सुन से हमारी सुकृत की तरह सी जी आड़े, मेरे जी आड़े, बहुत न हो बहुत न

केते नाग कुली केते नाग कुली में आहे केते पंख उड़ाए हटपन विच मंदर भंडे कर चोरी कर चोरी कर जावे अगों देखे पिछों देखे तुई ते कहां छिपावे तट तीर्थ हम नाभखंड देखे हट पटन मंजारा लैके तकड़ी तोलन लगा घट ही मह मंजारा जेता समन सागर नीर भरिया तेते युगन हमारे दया करो कुछ मेहर पावो डुब दे पत्थर उतारे जी हड़ागन बराबर तपे पीतर गगे गाती पर्वत नानक हुकुम बछाणा सब हो वेदन राती गौड़ी बराकन महला पहला रहण गवाई सौ कह दन सुखवाया खाए हीरे जैसा जन्म है कौडी बदले जाए नाम न जाने राम का मूढ़े फिर पासे भुगताए रे रहो अंता तरन तरनी तरी अनंत न चाह जाहे अनंत को चहन सोह गाहे से आए अनंत गवाए अपन लिया जे मलै ता सब को पाखट हो है कर्मा उपन नमेड़े जे लोचे सब कोए नानक करना जन किया सोही सार करे है हुक्म न जापी खसम का किसे उड़ाही दे गौड़ी बरागण महला पहला हरने होवा वन वसा कंत मूल चुन खाहूं गुर प्रसादी मेरा खाऊ।

फल फूल पेढे ए रस राती बहुर न छोड़े आन न रस कस लवे न लाई कहो नान गुर पय है सहाई गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा।

के अंतर जामी, करो अरदास अपने सतगुर पास, नानक नाम मिले सच रास। गौड़ी महला पंजवा, कान बिना जैसे थोथर तुखा, नाम विहून सुने से मुखा, हर हर नाम जपो नित प्राणी,

जन रहा समाय, कर कृपा प्रभ बिनो सुनिजय, दास की तूर नानक कौ दीजय। गौड़ी महला पंजवा, हर सिमर तेरी जाय बलाय, सर्व कल्याण वसी मन आए, पज मन

जलथल मैयल एक समाना रहाओ, अंतर बेख मुख अमृत सुनावै, जमपुर बादा चोटा खावै, अनक पड़दै मैं कमावै बेकार, खिनवे प्रगट हुए।

गुरु सोई तित बल रोग न व्यापे कोई, राम रमण तरण पै सागर, सरण सूर फाटे जम कागर रहाओ। सतगुरु मंत्र दियो हर नाम, ए आसर पूर्ण पै काम, जप तप संयम पूरी वड़ियाई, गुर कृपाल हर पै सहाई।

है पढ़िया अन पढ़िया परम गत पावे साधु संग सिमर गोपाल बिन नावै झूठा धन माल रहाओ रूप बंत सो चतुर सियाणा जिन जन मान्या प्रभ का भाणा जग

सदाचारी राम नारायण गर्भधारी प्रहलाद राधे कृपाधारी बोलो रावण भगत जयदा लूटी लंका सी समेत गर्भ गया बेन सब गुरे सहज भाव मद कीण महकासा हर नाकस लै नकम दासा दैर सुधारे भगत व्यासा

एक तरफ बोले बहुत पछता कंस का कंस कैसा झंडो राई राम ने जंडा अपनी मुखाई मिंज दी न रखे कोई बिनगुर को न मेटा जाए गुरमत धर्म दी